अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की, श्री कौशल्यानंदन भगवान की, श्री दशरथनंदन भगवान की, श्री कैलाशनंदन भगवान की, श्री सुंदरानंदन भगवान की, श्री चारों भैयन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी।

भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम शुभ संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम त्रिवेतारानाम महाराज की। संत बड़े परमारथे भेष धरे अवधूत राम नाम के गर्जना भाग जाए यमदूत श्री वेताराम नाम महाराज की। श्री राम लला भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय।

0: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शब्द कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

श्री गोविंद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान सृष्टि की तुलना उधर्वमुखी जड़ एवं अधोमुखी शाखाओं वाले एक पीपल वृक्ष से करते हैं एवं इसमें बंधे हुए मनुष्य को अनासक्ति रूपी हथियार द्वारा मुक्त होने को कहते हैं।

श्री भगवान अपने परम धाम के बारे में बतलाते हैं। वह कहते हैं कि जीव लोक के सभी प्राणी मेरे ही अंश हैं, जो कि मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्षरत हैं।

प्रभु कहते हैं कि इस जग में क्षर व अक्षर दो भांति के प्राणी होते हैं, परंतु एक अन्य उत्तम पुरुष जो क्षर अक्षर से परे है वह परमात्मा है और वेदों तथा जग में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे स्वयं ही पुरुषोत्तम हैं।

0: भारत देश में नदियों की संपत्ति अपार है। उत्तर भारत में सिंधु की सहायक नदियों के अलावा गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, मध्य भारत में नर्मदा और ताप्ती, पूरब में महानदी, दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी और देश की अन्य अनेक नदियां अपनी जीवन जलधाराओं से मानव कल्याण तथा संस्कृति के विकास में योगदान करती हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए कृष्णा वेणी जैसी आराध्य देवी बन गई है। कृष्णा नदी के जन्म के बारे में हमारे पुराणों में वृत्तांत मिलते हैं। एक इस प्रकार है।
1: चतुर्मुख ब्रह्मा ने कहा कि कलयुग के आरंभ के लिए सृष्टि का निर्माण करने का समय जब निकट आ गया, तब महाविष्णु ने पापों के परिहार के लिए तीर्थों के निर्माण की आज्ञा दी। हमने अपनी सम्मति दे दी। महाविष्णु ने अपने भक्त सह्य मुनि से सह्य पर्वत के रूप में अवतार लेने को कहा और वर दिया कि विष्णु अंश रूपी कृष्णा उसके तन पर से सदा सर्वदा बहती रहेगी।
0: इस तरह कृष्णा नदी ने महाविष्णु के अंश के रूप में जन्म लिया।
1: महेश के अंश के रूप में वेणी या वेणी नदी का प्रादुर्भाव हुआ। कृष्णा और वेणी नदियों ने मिलकर कृष्णा वेणी का रूप धारण कर लिया।
0: पौराणिक गाथाओं से प्रतीत होता है कि कृष्णा वेणी केशव और शिव का समागत स्वरूप है।
1: कहते हैं हिमालय से भी पुराना है दक्कन का पठार। इसके पश्चिमी कछार में स्थित घाटियों के महाबलेश्वर में गोमुख क्षेत्र है। वहीं गोमुख से कृष्णा नदी निकलती है।
2: पाप घपरिहार

0: पटना स्थित दक्कन कॉलेज के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर एम एस राजगुरु की मान्यता है।
1: नाउ द प्रेजेंट कृष्णा एज यू सी टुडे इट कुड बी एज ओल्ड एज 1 मिलियन ईयर्स ओल्ड।
2: आज जिस कृष्णा नदी को आप देखते हैं वो 10 लाख वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। अनुमान है कि कृष्णा नदी के कछारों पर आज के मानव का पत्थर युग के मानव के रूप में पहले पहल करीब 30,000 साल पहले आविर्भाव हुआ था। आप शायद इस तथ्य से अवगत होंगे, जब डोम नामक स्थान पर बांध का निर्माण हो रहा था तब खुदाई में पत्थर युग के अनेक औजार मिले थे।
0: महाबलेश्वर के पर्वत पाद में स्थित वाय गांव से होकर कृष्णा नदी बहती है। ये गांव पहले जैन धर्मावलंबियों का केंद्र था। इसके बाद वहां वेदाध्ययन केंद्र भी बना। मराठी विद्वान श्री तारक तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी ने वाय के बारे में इस प्रकार विवरण दिया है।
3: There are 7 घाट्स and there are very fine temples.
4: वाय में 7 घाट हैं। यहाँ कृष्णा नदी के तट पर बहुत सुंदर देवालय हैं। इसीलिए ये गांव लोगों को आज ही नहीं सदियों से आकर्षित करता आ रहा है।

0: थ्रूआउट द इयर्स सेंचुरीज।
1: वाई पहुंचते ही आपको ज्ञात हो जाएगा कि यहाँ 384 देवालय हैं और 7 जगहों पर स्नान करने के लिए घाट हैं। कृष्णा नदी के तट पर स्थित पवित्र स्थलों में वाई गांव को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। वाई ग्रामवासी लेखक श्री रविंद्र भट्ट ने बताया,
2: आमच्या वाईची कृष्णाबाई ही नुसते वाईचीच नाही तर साऱ्या परिसराचीच लोकमाता।
3: तो ज्या वेळेस अब्दुल खानांनी स्वारी,
4: कृष्णा नदी केवळ हमारी ही नहीं बल्कि सबकी लोक माता है। शिवाजी ने सुल्तान अफजल खान पर चढ़ाई करते समय कृष्णा नदी की पूजा कर विजय प्राप्त की। तब से कुल धर्म तथा जाति भेद के बिना सभी लोग माघ मास में 5 दिन उत्सव मनाते आ रहे हैं।
2: वाचवाव म्हणून अतिशय कारुण्यान
1: कृष्णा और वेणी मिलकर अविरल जल प्रवाह बन कृष्णा वेणी के रूप में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में कोयना, यारला, वरुणा, दूध गंगा आदि उपनदियां इसमें मिलती गईं। पश्चिम की घाटियों में पश्चिम की ओर बहने वाली और अरब सागर में मिलने वाली नदियों की लंबाई बहुत कम है, लेकिन ये नदियां जल विद्युत उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी रही हैं। इसके विपरीत कृष्णा नदी 1500 मीटर की ऊंचाई पर जन्म लेकर पूरब की ओर बहती हुई 1200 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है और फिर कृष्णा जिले की सुदूर सीमा में इसका सागर से संगम होता है।

0: इस नदी का प्रवाह प्रांत लगभग 2,59,000 वर्ग किलोमीटर है।
1: इसकी सहायक कोयना नदी पर बनाया गया जल विद्युत केंद्र 860 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है।
0: कृष्णा नदी सतारा से होकर सांगली तथा कुरंदवाड़ा को पार कर बीजापुर में प्रवेश करती है।
1: कर्नाटक में कदम रखते ही कृष्णा वेणी 3 मील के फासले में 408 फुट नीचे की ओर उतरती है, जैसे उछलती कूदती अपने उत्साह को प्रकट करती हो।
0: नीचे उतरते समय होने वाली ध्वनि 30 मील दूर तक सुनाई देती है। ये नदी जिन जिन इलाकों से होकर बहती है उनमें कई ऐतिहासिक महत्व रखते हैं।
1: इनमें मुदगल, बादामी, ऐहोली, पट्टडकल और अन्य अनेक स्थल सुप्रसिद्ध हैं।
0: कर्नाटक में मलप्रहारिणी या मलप्रभा और घटप्रभा नदियां कृष्णा में मिलती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन पर बांधों का निर्माण हुआ। इसी क्षेत्र में वीर शैव धर्म प्रवर्तक श्री बसवेश्वर का प्रादुर्भाव हुआ। भक्तों का कहना है कि उन्होंने सदैव कुडली संगमेवर की पूजा की तथा 400,000 स्वरचित भक्ति गीतों का गान किया, जिन्हें बसव वचन के नाम से पुकारते हैं। इन भक्ति गीतों ने कन्नड़ भाषा को परिपुष्ट किया, अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीति का भी विरोध किया उस महान विभूति बसवेश्वर ने। कृष्णा नदी पर ऊपरी कृष्णा बांध का निर्माण किया गया है। ये कर्नाटक में एक बड़ा बांध है। इस प्रोजेक्ट में आलमट्टी और सिद्धापुर नामक दो बांध हैं। इन बांधों के जरिए लाखों एकड़ भूमि को सिंचाई के लिए पानी प्राप्त होता है। इससे लोगों का जीवन विधान ही जैसे बदल जाता है। दूध के उफान की तरह श्री और संपत्ति घर घर में उफनती हैं और फसलें जैसे सोना देती हैं।
2: पश्चिम घाटियों में छत्रपति शिवाजी के द्वारा बनाए गए कई गिरी दुर्गों के पार्श्व के झरनों को मिलाती भीमा नदी आगे बढ़ती है।
1: पंडरीपुर विट्ठल देव के पैरों को जैसे भीमा नदी छूती है।
2: नामदेव, ज्ञानदेव, तुकाराम, गोरा, कुंवर, सबकुबाई और कई भक्तों ने विट्ठल देव

0: रायपुर क्षेत्र में भीमा नदी का मिलन कृष्णा नदी में हुआ है
1: और एक महान सहायक नदी है तुंगभद्रा। वराह पर्वत श्रेणी में गंगमूल के पास तुंगा नदी का जन्म हुआ। भद्रा नदी का भी जन्म इसी क्षेत्र में हुआ। इन दोनों का मिलन ही तुंगभद्रा माना जाता है।
2: आदिशंकर का शारदा पीठ यही है।

0: हसपेट के पास तुंग भद्रा बांध का निर्माण हुआ। इससे सिंचाई के लिए पानी मिलता है, जिससे इस क्षेत्र में खेती की उन्नति हुई है। तुंग भद्रा बांध से बिजली भी तैयार की जाती है। दक्षिण भारत के इतिहास में सभी क्षेत्रों में प्रगति प्राप्त हम्पी विजयनगर का स्पर्श करती हुई तुंगभद्रा आगे बढ़ती है। तुंगभद्रा ने कवि, पंडित, गायक, किसान तथा मजदूरों से सम्मान प्राप्त किया। इस नदी के लिए कहावत प्रचलित है, पान के लिए तुंगा, स्नान के लिए गंगा। आंध्र प्रदेश में कृष्णावेणी और तुंगभद्रा का मिलन होता है। कृष्णा नदी को श्रीशैलम क्षेत्र में पाताल गंगा के नाम से पुकारते हैं। यहाँ जल विद्युत केंद्र का निर्माण किया गया है। रॉयल सीमा के कुछ क्षेत्र को खेती के लिए पानी तथा मद्रास नगर के निवासियों को पीने का पानी देने के लिए तेलुगु गंगा बांध का निर्माण हो रहा है। श्रीशैलम शैव क्षेत्र माना जाता है। यहाँ भ्रमरांबा का शक्तिपीठ तथा मल्लिकार्जुन के ज्योतिर्लिंग हैं। वाराणसी की तरह यहाँ भी शिवलिंग को छूकर सब लोग जी भरकर पूजा कर सकते हैं। सूर्य शशांक वन्नी नयन। इक्ष्वाकुल के समय का विजयपुरी इसी कृष्णा नदी के निकट स्थित है। लगभग 2000 वर्ष पहले आचार्य नागार्जुन ने महायान बौद्ध धर्म का प्रचार किया था इस क्षेत्र में। अब यहाँ कृष्णा नदी पर बनाया हुआ नागार्जुन सागर बांध स्थित है। सागर के एक टूरिस्ट गाइड श्री बी वीरेंद्र इस बांध के बारे में यूं बता रहे हैं।
1: दीनी पंडित जवाहरलाल नेहरू गारु 10 दिसंबर 1955 ना ई शंकुस्थापन चेयटं द्वारा मोदलैनप्पटिकी अयिते निर्माण मोदलु चेसिन
2: स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 दिसंबर 1955 को इस बांध का शिलान्यास किया था, किंतु वास्तविक रूप में इसके कार्य की शुरुआत सन 1957 में हुई और सन 1969 में ये योजना पूरी हुई, जिन्हें हम जवाहर केनाल तथा लाल बहादुर केनाल कहते हैं। इन दोनों नहरों का उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी ने 4 अगस्त 1967 को किया। जवाहर नहर की लंबाई 126 मील है। इसके द्वारा 12.5 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। इससे अनाज तथा कई प्रकार की दलहन की पैदावार में वृद्धि हुई है। बाई नहर तेलंगाना की ओर 111 मील लंबाई में खोदी गई। इससे कृष्णा जिले को भी सिंचाई के लिए पानी मिलता है।
0: इक्ष्वाकुओं का विजयपुरी शहर डूब गया। यहाँ से खोदकर निकाले गए शिल्पों, आरामों, स्तूपों तथा चैत्यों के अवशेष को रखा गया है नागार्जुन सागर के बीच पहाड़ पर स्थित म्यूजियम में। हमारे देश में जलाशय के बीच में स्थित ये अकेला म्यूजियम है।
3: दुनिया में पत्थरों से निर्माण किए गए बांधों में काले पत्थरों से निर्माण किया गया नागार्जुन सागर का ये बांध सबसे बड़ा है।
0: इतिहास प्रसिद्ध पलनाडु कृष्णा नदी के नजदीक है।
3: यहाँ के शासक ब्रह्म नायडू की शासन व्यवस्था बहुत लोकप्रिय थी। उनकी लोकप्रियता लोक जीवन का स्वर बनकर आज भी गूंजती है।

ब्रह्म नायडू अपना शासन संचालन इस प्रकार करते थे कि उनके राज्य में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रह गया था। उन्होंने सभी धर्मों को आदर दिया, मानव मात्र में समानता की भावना फैलाई और सब में एकता की भावना फैली। उन्होंने सहभोज की परंपरा चलाई। इतना ही नहीं बल्कि ब्रह्म नायडू ने हरिजन कुलोत्पन्न कन्नम दास को अपना सेनापति बनाया था। मानव समानता के ऐसे नियामक ब्रह्म नायडू धन्य थे।

0: छोटे छोटे पत्थर फुटकर भगवान है, नागुलेट का पानी पारस का पत्थर है, बाजरा है, ज्वार का भात है, सर्प और बिच्छू है, पलनाटी सीमा के गांव ऐसे हैं।
1: आज इस क्षेत्र में मिलने वाले पत्थरों का उपयोग करके सीमेंट बनाया जाता है, ईख का उत्पादन करके शक्कर बनाया जा रहा है।
2: हैदराबाद क्षेत्र से मुसी नदी मत सामंजस्य की भावना प्रवाहित करते हुए कृष्णा नदी में मिलती है।
3: मुसी का आना पूरी हो मेरी कामना, ये कहावत शायद सच हो गई।
1: वेदादी नारसिंह क्षेत्र के पार्श्व से कृष्णा नदी अमरावती की ओर निकली।

0: बौद्ध साहित्य और संस्कृति में प्राचीन अमरावती का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ईसा के 200 वर्ष पूर्व से ईसवी सन के 200 वर्षों तक अमरावती के बौद्ध स्तूप निरंतर कीर्तिमान होते रहे। यहाँ के गाइड श्री माची राजू वेणुगोपाल।
1: पेरलो अंदम ऊरीलो चंदन कलिगिनटुवंटि अमरावतिलो अद्भुतमैनटुवंटि अपूर्व शिल्प निकुंजालु
2: मान में शोभा तथा गांव में सुंदरता लिए अमरावती अपने आप में अद्भुत है और अद्भुत तथा अपूर्व है यहाँ का शिल्प समूह। उसे देखकर हृदय में आनंद का संचार तो होता ही है, आश्चर्य भी होता है। यहाँ के शिल्पियों की निपुणता आंध्र के इतिहास में चार चांद लगाती है। यहाँ प्राचीन काल में महाचैत्य भी था। ऐसा माना जाता है कि अशोक के बाद महादेव नाम के बुद्ध सन्यासी ने बुद्ध की धातुओं को उसमें रखा था।
1: उच्च स्थिति अमरावती महाचैत्या मोटमोदारी 1797
0: 2000 वर्ष पहले निर्मित इन स्तूपों की शिल्पकला उस समय के जीवन विधान की ओर जैसे आज भी संकेत करती हो। इतिहास बताता है कि यहाँ के शिल्पकारों ने अपनी कला को एक ओर कार्लो में तो दूसरी ओर अजंता और एलोरा में प्रसारित किया।
3: इसके अलावा उन्होंने सांची तथा ग्वालियर जाकर भी पत्थरों में रूप कल्पना को साकार किया और अपार शिल्प संपत्ति की सृष्टि की।
0: प्रमुख शिल्प समालोचक आनंद कुमार स्वामी के अनुसार अमरावती की शिल्पकला लालसा और उन्माद भरने वाली है और भारतीय शिल्प जगत में अत्यंत सुकुमार और सुंदर है। अमरावती के बगल में ही अमरेश्वर का मंदिर है, जहां से कृष्णा और कुछ दूर पूरब की ओर यात्रा

0: ये एक शैव क्षेत्र है। इंद्र की लाद्री पर स्थित कनक दुर्गा तथा मल्लेश्वर नित्य भक्तों की आरती से प्रसन्न होते हैं। सर आर्थर कॉटन के अनुसार जनरल कोर ने सन 1855 में यहीं 3714 फुट लंबे बांध का निर्माण किया। गोदावरी के पार्श्व में स्थित कोत्तगु डैम के कोयले से और कृष्णा नदी के पानी से विजयवाड़ा के थर्मल स्टेशन में बिजली का उत्पादन होता है। इसके बारे में कृष्णा केंद्रीय मंडल के अधिकारी श्री एम नरसिम्हा राव बताते हैं।
1: दक्षिण भारत देश कृष्णा नदी रेंडो पद्धति कृष्णा नदी विजयवाड़ा वद्दा
2: कृष्णा नदी विजयवाड़ा के पास एक तिहाई मील खाली भाग में दो पहाड़ों के बीच बहती है। इससे यहाँ बांध बांधने में सुविधा हुई। सन 1952 में 100 साल पूरे हुए। इस बांध की नींव कमजोर हो गई, जिसके कारण इसमें दरारें पड़ गईं। उसके बाद सब तरह से सुविधाजनक रोड कम रेगुलेटर का निर्माण हुआ, जो नेशनल हाईवे नंबर 5 से मिलता है।
0: प्रकाशम बराज नामक इस बांध से अब 13,30,000 एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। कृष्णा नदी विजयवाड़ा से आगे बढ़कर कुचिलपुरी के पास से बहती है। यहीं पर सिद्धेंद्र योगी ने भामा कलाप की रचना की। तब से सिद्धेंद्र जी की सत्यभामा ने कुचिपुटी भागवतों से पूर्णता प्राप्त कर देश विदेश में ख्याति पाई। भरत की आराधना करने वाले कुचिपुड़ी लोगों ने अपने को कृष्णा तटवासी कहते हुए भामा के साथ जोड़ा।

मूर्वक क्षत्रिया के पदों का अभिनय करने वाली नर्तकी मणिया श्रीकाकुलेंद्र महाविष्णु देवालय में देवदासियों की तरह रहा करती थी। ये देवालय प्राचीन समय में कृष्णा नदी के बीच द्वीप पर था और अब आसपास के क्षेत्र केले, ईख, आम, हल्दी, नारियल आदि के बागीचों के साथ साथ बाजरा, ज्वार, मक्का, दलहन आदि के खेतों से सदा हरे भरे रहते हैं, जैसे कृष्णा नदी का पानी सोने की फसलें देता हो।

किसान तथा खेत में काम करने वाले मजदूर माता कृष्णा की आराधना करते हैं। उस क्षेत्र में बहती कृष्णा का प्रवाह वेग कम होता जाता है, किंतु उसके पाट की चौड़ाई बढ़ती जाती है। सागर से आने वाले ज्वार से उसका स्पर्श होता रहता है और वो शनि शनि सागर की ओर बढ़ती रहती है।

0: महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र के लोगों की आराध्य देवी कृष्णा वेणी श्री संपदा की अगाध निधि का दान करती हुई और संस्कृति को संपन्न करती हुई अंततः सागर से जा मिलती है, जैसे अपने प्रियतम की गोद में जाकर अपने अस्तित्व का विलय कर रही हो।
1: प्रणाम।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी। आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने। एक गोपी बड़ी चालाक थी। उसने क्या किया था कि जहां माखन की मटकी टांगी थी उसी रस्सी से घंटी भी बांध रखी। कन्हैया आएंगे, मटकी फोड़ेंगे, घंटी बजेगी, हम उनको पकड़ लेंगे। कन्हैया पहुंचे, अपने साथियों के साथ देखा कि घंटी भी बंधी हुई है। समझ गए गोपी बड़ी चालाक है। तो घंटी को आदेश दिया कि तुम बोलना नहीं, चुप रहना, मेरे साथियों को माखन खाना है। मटकी फोड़ी गई, सब साथियों ने खूब माखन खाया और घंटी चुप। जब सब खा चुके तो कन्हैया ने सोचा थोड़ा मैं भी खा लूं, वो तो सबको खिला के खाते थे। जैसे ही जरा सा माखन मुख से लगाया तो घंटी जोर जोर से बजने लगी। कन्हैया ने कहा, ये क्या, जब मेरे साथी खा रहे थे तो तुम चुप थी, मैंने जरा सा माखन खाया तुमने बजना शुरू कर दिया। घंटी बोली, हमारे भगवान भोग लगा रहे हो, तुम कैसे चुप रह सकते हैं? हमारा तो काम ही यही है कि जब भगवान भोग लगाएं तो हम सारे संसार को बताएं कि अब प्रसाद ले लो, भगवान ने भोग लगा लिया। बस आ गई गोपी, पकड़ लिया, ले गई यशोदा के पास। यशोदा अचानक पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया क्या? और कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया,

दूसरा तर्क दिया, कहने लगे माँ जरा सोचो माखन कैसे खा सकता हूँ, इतना छोटा सा बालक, छोटे छोटे हाथ पैर मेरे, और माखन कहाँ टांग के रखते हैं। मैया मोरी

इशारा किया कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, ये जो मुंह में माखन लगा है कैसे लग गए? कन्हैया ने सोचा तो फंस गए, भूल हो गई, तुरंत उत्तर दिया,

अब कन्हैया ने माँ की खुशामद, माँ की तारीफ शुरू की। माँ प्रसन्न हो जाएगी, क्षमा कर देगी।

विशेष बात हो गई। कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया माँ ने। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई माँ नहीं सुन सकती। आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के, कहने लगे, माँ मैं समझ गया बात क्या है, ये माखन की बात नहीं है। ये माखन का तो तुमने बहाना लिया, तुम्हारे मन में क्या है मैं जान गया। कहने लगे,

कल्पना कीजिए क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया और दोनों कह रहे माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। चमत्कार देखे शब्दों का, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया। अभी तक मां कह रही है

विजयधर, संतूर पर पीयूष पवार, तबले पर यामा सरशार, और जिन्होंने डांस प्रस्तुत किया संगीता रॉय, आज के अनाउंसर स्मिता परिक, और हारमोनियम पर

क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए। कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

इस जगत का पालनहार अपने भक्तों से जैसे प्रेम करता है, वैसे ही अपने भक्तों की परीक्षा भी लेता है। हर भक्त के लिए प्रभु के दरबार के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, मगर ईश्वर तक पहुंच पाना आसान काम नहीं। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हम पूजन, अर्चन, भजन, कीर्तन, नाम सुमिरन, उसका मनन चिंतन करते हुए आराधना के अलग अलग मार्गों का सहारा लेते हैं, मगर ये सब करते हुए भी जब ईश्वर का साक्षात्कार ना हो तो भक्त हरि से शिकायत के स्वर में याचना करता है, मैं कौन सी राह अपनाऊं कि प्रभु तेरे दर्शन हों।

0: शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि भगवान शिव शंकर द्वारा अपनी क्रोधाग्नि समुद्र में डाले जाने पर दैत्य जलंधर की उत्पत्ति हुई। शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में जलंधर शीघ्र ही दैत्यराज बन बैठा। वो इतना बड़ा धर्म अनुयायी था कि स्वयं शिवजी ने उसे मारने से इनकार कर दिया। जलंधर ने युद्ध में विष्णु जी को परास्त कर उन्हें लक्ष्मी जी समेत अपना अतिथि बना लिया। नारद मुनि ने जलंधर का धर्म भ्रष्ट करने के उद्देश्य से उसके मन में देवी पार्वती के प्रति आसक्ति पैदा की। बुद्धि भ्रष्ट जलंधर ने राहु को अपना दूत बनाकर शिवजी के पास भेजा। प्रस्तुत है आगे की कथा, जिसके रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: महाभाग सूत जी, प्रतीत होता है अवश्य ही कोई

0: रोचक घटना घटने जा रही है।
1: हाँ विप्रवर शौनक जी, एक तो महादेवी पार्वती के प्रति किसी दैत्य की आसक्ति और फिर राहु का दूत बनकर आना।
0: वो राहु जो अमृत से वंचित होने के कारण पहले ही देवताओं से रुष्ट था, फिर क्या हुआ सूत जी?
1: जलंधर की आज्ञा से लैस देवताओं के पूर्व कृत्यों का प्रतिशोध लेने की भावना से परिपूर्ण राहु कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा।
2: अरे ये कौन उद्दंड है, कैसे प्रभु के सभा भवन में घुसा चला जा रहा है?
3: रुको, कौन हो तुम? ऐसे बिना आज्ञा भवन में कैसे प्रवेश कर रहे हो?
4: अरे वृषभ, तू मुझे नहीं पहचानता? मैं महादैत्यराज जलंधर का दूत राहु हूं। मुझे कहीं आने जाने के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरा मार्ग छोड़।
3: नहीं नहीं, तुम ऐसे भीतर नहीं जा सकते।
4: रोक सके तो रोक ले मेरा मार्ग।
3: शिवगणों, इस दूत को बंदी बना लो।
4: मुझे राहु को बंदी बनाएंगे? हो गए ना सब धराशायी, भीतर चलता हूं। देवों के भी देव शिव को मेरा, दैत्यराज जलंधर के दूत राहु का प्रणाम। परम पिता तथा श्री विष्णु हरे को भी मेरा प्रणाम।
5: आओ राहु, तो इस बार तुम जलंधर के दूत बनकर आए हो, मंतव्य बताओ राहु।
4: मेरे स्वामी जलंधर के पराक्रम तथा ऐश्वर्य से सभी परिचित हैं। संपूर्ण सृष्टि में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो उनके पास ना हो। बस उन्हें आवश्यकता है तो मात्र एक ही वस्तु की।
5: कहो राहु।
4: आपकी भार्या सर्वांग सुंदरी पार्वती की।
5: क्या
4: आप उन्हें मेरे स्वामी को उपहार स्वरूप दे दें?
5: राहु, प्रथम बात तो यह है कि देवी पार्वती कोई वस्तु नहीं है, वो हमारी पत्नी है, और पत्नी किसी के मांगने पर भी उपहार में नहीं दी जा सकती है।
4: परंतु छीनी तो जा सकती है।
5: पति पत्नी का संबंध आजीवन का होता है। मात्र मृत्यु ही पति को पत्नी से और पत्नी को पति से छीन सकती है। क्या तुम्हारे स्वामी जलंधर ये भूल गए कि हम मृत्यु से परे हैं?
4: मृत्यु से परे तो मेरे स्वामी जलंधर भी हैं देव। उनकी धर्म परायणता मृत्यु के विरुद्ध उनका कवच है, जिसे आप भी नहीं भेद सकते।
5: क्या तुम्हारा धर्म परायण स्वामी ये नहीं जानता कि किसी पर स्त्री की कल्पना मात्र से ही धर्म क्षीण हो जाता है? वो तो पर स्त्री की मांग कर रहा है।
4: वो मांग नहीं कर रहे हैं, आपको आदेश दे रहे हैं।
6: आदेश?
5: आदेश?
4: शिव को आदेश?
6: महाप्रभु ने अपनी एड़ी से धरती फोड़कर ये किस विकराल जीव को उत्पन्न किया है? इसका मुख तो सिंह के समान है।
7: विधात, मानो दूसरा नृसिंह पैदा हो गया हो।
8: आदेश महाप्रभु।
5: स्वकीर्तिमुख, इस राहु का भक्षण करो।
9: नंदीश्वर, देखो तो राहु कैसा भैसे इधर उधर भाग रहा है।

0: कीर्ति मुख ने उसकी क्रीवा पकड़ ली है।
1: रक्षा रक्षा, मैं एक दूत हूँ, दूत को कुछ भी कहने का अभेदान प्राप्त होता है। ये मर्यादा आप ही द्वारा स्थापित की गई है देवों के देव। रक्षा रक्षा।
2: श्रुति मुख, छोड़ दो इस दुष्ट प्राणी को। जो क्या महादेव, स्वकीर्तिमुख, हम तुम्हारे आदेश पालन से प्रसन्न हुए। आज से तुम इसी नाम से प्रसिद्ध होगे और हमारे द्वार पर स्थित रहोगे। जैसे हम पूज्य हैं, तुम भी पूज्य होगे।
3: मैं धन्य हुआ देवाधिदेव।
2: हमने तुमको मुक्त किया राहु, हम आज्ञा पालकों से प्रसन्न रहते हैं। तुम भी अपने स्वामी की आज्ञा का पालन ही कर रहे थे। दूत का यही कार्य होता है, निर्भय और स्पष्ट रूप से अपने स्वामी का उद्देश्य बताना।
1: जी महादेव।
2: परंतु दूत का कार्य यह भी होता है कि वो अपने स्वामी को भी दूसरी ओर का संदेश स्पष्ट शब्दों में दे।
1: देवाधिदेव, आपका संदेश क्या है?
2: जाओ कह दो अपने स्वामी जलंधर से, हमें उसकी मांग स्वीकार नहीं है। उससे जो संभव बन पड़े वो चेष्टा कर ले, हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे।
1: जो आज्ञा।
2: नंदीश्वर।
4: आज्ञा महाप्रभो।
2: हमारे वीर पुत्रों गणेश और कार्तिकेय, वीरभद्र तथा महाकाली के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान हो।
5: महादेव शिव शंकर की
6: जय।
5: महादेव शिव शंकर की
6: जय।
7: विष्णु, अरे ये क्या, जलंधर ने पुत्र कार्तिकेय को अपने अस्त्रवार से मूर्छित कर दिया है।
8: अरे विदात, क्रोध में आकर महाप्रभु ने जलंधर पर वार किया है, परंतु जलंधर पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ।
7: ये मुनि नारद जलंधर के पास क्यों जा रहे हैं?
9: नारायण नारायण नारायण। दैत्यराज, शिवजी के प्रहारों से तुम आहत हो गए हो।
10: हाँ।
9: मुझे लगता है तुम्हारा कुछ विश्राम कर लेना आवश्यक है।
10: परंतु युद्ध कैसे रोका जा सकता है मुने नारद?
9: नारायण नारायण, तुम मायावी हो, अपनी गंधर्वी माया से युद्ध स्थल को मनोरंजन स्थल में परिवर्तित कर दो, सब मोहित हो उठेंगे और युद्ध रुक जाएगा।
10: आपका सुझाव उत्तम है।
9: नारायण नारायण।

0: हाँ? अरे विदात, ये क्या? सभी सभी दैत्य कहाँ लुप्त हो गए? हाँ? उनके स्थान पर गंधर्व अप्सराएं तथा किन्नर कैसे नर्तन करने लगे? हाँ? विदात, स्वयं देवाधि देव ने युद्ध समाप्त कर दिया है, वे भी मोहित से नर्तन देखने में मग्न हो गए हैं।
1: ये अवश्य किसी की मायावी शक्ति का प्रभाव है। भारत मुने जलंधर से क्या वार्तालाप कर रहे हैं?
0: संभवतः वो देवताओं की विजय प्रशस्त करने के लिए कोई प्रपंच रच रहे हैं।
2: नारायण नारायण, दैत्यराज जलंधर, सभी देवता नृत्य गान में मग्न हैं। यही समय है तुम शिव

0: का रूप धारण करके पार्वती का अपहरण करके ले आओ।
1: हाँ? परंतु इससे क्या होगा मुनि नारद?
0: नारायण नारायण जलंधर, शिव पत्नी जब तुम्हारे पास होंगी तो उन्हें मुक्त करने के लिए तुम शिवजी से कुछ भी मांग सकते हो, अमरत्व भी। और हाँ, और फिर दैत्यराज, देवी पार्वती को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही तो तुम ये युद्ध कर रहे हो ना?
1: उस सुंदरी का वरण करने की इच्छा क्षण प्रतिक्षण तीव्र होती जा रही है मुनि नारद।
0: नारायण नारायण, तो जाओ, तुरंत जाओ। इस समय देवी पार्वती की रक्षा हेतु कोई नहीं है। हाँ?
1: जो आज्ञा नारद मुनि।
0: नारायण नारायण।
2: पार्वती, देवी पार्वती।
3: अरे देवाधिदेव तो आ भी गए। मुख्य तेज से प्रतीत हो रहा है कि इन्हें विजयश्री प्राप्त हुई है। स्वागत है स्वामी, विजयश्री पर आपका अभिनंदन है।
2: पार्वती, हमें भला कौन पराजित कर सकता है? वो कथित दैत्यराज जलंधर तो हमारे एक मुष्टि प्रहार से ही भूमि में समा गया।
3: ये तो देवाधिदेव की भाषा नहीं है। उन्होंने कभी अपने किसी कृत्य पर इतना अभिमान नहीं किया।
2: किन विचारों में लीन हो गई पार्वती? अपने विजयी पति का आलिंगन नहीं करोगी?
3: ये महाप्रभु हो ही नहीं सकते। ये अवश्य किसी की माया है।
2: प्रिये, तुम मौन क्यों हो? आओ, हमारे समीप आओ।
3: देवाधिदेव, ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, अन्य देवगण तथा आपके अपने गण कहाँ हैं?
2: वे हमारी विजय का आनंद मना रहे हैं।
3: ये तो कदापि महादेव की भाषा नहीं है। वे आनंद के स्थान पर उत्सव कहते हैं। हे छली, हम जान गए हैं तू महाप्रभु की परछाई भी नहीं हो सकता। कौन है तू? अपने असली रूप में आ।
1: बहुत बहुत चतुर हो तुम पार्वती, पहचान ही लिया कि हम शिव नहीं हैं।
3: अरे मूर्ख जलंधर, एक पतिव्रता गंध मात्र से अपने पति को पहचान लेती है। तूने भ्रमित करने का प्रयास भी किया तो किसे? सतीत्व की परिभाषा को?
1: इतने भारी शब्दों का अर्थ हम नहीं जानते पार्वती। हम तो मात्र इतना जानते हैं कि पुरुष शक्ति के समक्ष स्त्री उतनी ही असहाय होती है जितना कि एक मेमना सिंह के समक्ष होता है।
3: अच्छा, अरे दुर्बुद्धि, तो तू ये समझता है कि अकेली स्त्री असहाय होती है? तो देख इस अकेली असहाय स्त्री का चमत्कार।
1: अरे ये कहां गई पार्वती? अरे कहां विलुप्त हो गई पार्वती? ये तो अनर्थ हो गया। नारद ने मुझे भ्रमित कर मुझे क्या करवा डाला और मैं मूर्ख राज शुक्राचार्य के बताए धर्म मार्ग को छोड़कर ये क्या कर बैठा? मुझे महादेवी से क्षमा याचना करनी होगी। परंतु वे गई कहां होगी? कहां गई होगी महादेवी? महादेवी कहां गई होगी? महादेवी!

0: ब्रह्मदेव, जब कोई असुर अपने माया जाल से युद्ध स्थल को क्रीड़ागार में परिवर्तित कर डाले तथा अपनी अनैतिक इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास करे तो देवी को युद्ध स्थल में उतरना ही पड़ता है।
1: देवी, आप क्रोधित ना हो, शांत हो जाएं। ये तो देवाधिदेव द्वारा निर्धारित कालचक्र की ही गति।

0: असुर जलंधर ने मेरे स्वामी का रूप धारण करके मेरे शील भंग का प्रयास किया है। चाहिए आप उसकी पत्नी वृंदा का शील भंग कीजिए।
1: महादेवी, आपने आपने ये क्या आज्ञा दे डाली मुझे?
0: श्री विष्णु, देवाधिदेव ने आपको जन्म दिया है, वे आपके पिता हुए, मैं उनकी पत्नी हूँ। इस नाते मैं आपकी माता स्वरूप हुई। चाहिए माता की आज्ञा का पालन कीजिए।
1: परंतु माते, मेरा धर्म?
2: विष्णुदेव, माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही संतान का सबसे बड़ा धर्म है। माता की आज्ञा का पालन करते हुए पुत्र गणेश ने तो अपना सिर तक कटवा दिया था।
1: हाँ? ये क्या ब्रह्मदेव, वेदों और धर्म के ज्ञाता होकर भी आप मुझे ये घृणित कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं?
2: जलंधर का अंत जन कल्याण का कार्य है, यही आपके माता पिता की अभिलाषा है, और जन कल्याण हेतु किया गया कोई भी कार्य कुकृत्य नहीं हो सकता।
0: श्री विष्णु, ये एक पत्नी का प्रतिशोध नहीं है, एक पत्नी का पतिव्रत धर्म है, जलंधर की पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म, जो मेरे स्वामी के विजय के मार्ग में अवरोध बना हुआ है। देवताओं की विजय के लिए उसका ये सुरक्षा कवच तोड़ा जाना आवश्यक है। जाइए, हमारे आदेश का पालन कीजिए।
1: देवी, परमपिता, महादेवी तो आदेश देकर लुप्त हो गईं, परंतु मेरा हृदय, मेरा मानस ऐसा करना स्वीकार नहीं कर पा रहा है।
2: देवाज्ञा की पूर्ति भी हमारा धर्म है श्रीहरि।
1: स्वप्न, हाँ, स्वप्न को माध्यम बनाता हूँ।
3: ये कैसा मादक स्पर्श है, मेरा अंग अंग रोमांचित हो उठा है। क्या स्वामी लौट आए हैं? अरे, मेरे नेत्र क्यों नहीं खुल रहे? परंतु आश्चर्य की बात है, मैं बंद नेत्रों से भी स्वामी जलंधर के दर्शन कर रही हूँ। वे मुस्कुराते हुए मुझे आलिंगन बद्ध करने को बढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, यह तो मेरे स्वामी का रूप बदल रहा है। कौन है यह दिव्य पुरुष, और मैं क्यों आकृष्ट हुई जा रही हूँ इनकी ओर? नहीं नहीं, इस कल्पना मात्र से ही मेरा पतिव्रत धर्म भ्रष्ट हो गया है। स्वामी स्वामी जलंधर में भ्रष्ट हो गई, मैं भ्रष्ट हो गई। हाँ, ये क्या, ये तो स्वप्न था। स्वप्न में ही सही, मैं भ्रष्ट हो गई। कहीं ये किसी अनिष्ट का संकेत तो नहीं? चलूं बाहर किसी से पूछूं। ये क्या, भवन के बाहर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। किससे पूछूं? हाँ, वो दो मुनि चले आ रहे हैं, उनसे पूछती हूँ। मुनिवर, रक्षा, मेरी रक्षा कीजिए इन राक्षसों से। मुनिवर,
4: लीजिए। मुनिवर के हुंकार से राक्षस भाग गए, परंतु देवी, ये क्या, आपने भयभीत होकर मुनिवर का बाहु क्यों पकड़ लिया?
3: अनर्थ, अब तो वास्तव में अनर्थ हो गया। पहले स्वप्न में पर पुरुष का स्पर्श, और अब मूर्खतावश इन पर पुरुष मुनि का स्पर्श, मैं क्या करूं?
4: क्या बात है देवी, आप इतनी उद्विग्न क्यों हैं?
3: मुनिवर, एक विभत्स स्वप्न देखकर अपने स्वामी जलंधर का कुशल क्षेम जानने

0: मैंने पर पुरुष को वास्तव में छू लिया। अरे अरे, यही मुनि तो दिव्य पुरुष के रूप में मेरे स्वप्न में आए थे। ये क्या छलावा है? आप दोनों कौन हैं? मेरे पति का कुशल क्षेम बताइए। मुनिवर की हुंकार पर ये दो वानर कैसे उपस्थित हो गए? मुनि उन्हें मौन भाषा में क्या आदेश दे रहे हैं? वानर तो आकाश में उड़ गए। आप बोलते क्यों नहीं मुनि श्रेष्ठ? ये क्या हो रहा है?
1: देवी, मुनिवर मौनी बाबा हैं। क्या हो रहा है ये अभी स्पष्ट हो जाएगा।
0: नहीं, ये वानर तो मेरे पति जलंधर का कटा हुआ शीर्ष लेकर आए हैं। मैं जानती थी कि मेरा पतिव्रत धर्म भंग होते ही मेरे पति की शक्ति क्षीण पड़ जाएगी, शिव के हाथों उनका वध हो जाएगा। अरे, कौन हो तुम दोनों मुनि? ये क्या माया रची है?
2: देवी वृंदा, मैं विष्णु हूँ तथा देवी पार्वती के आदेश से ही ये माया रची गई थी।
0: महादेवी के आदेश पर? परंतु क्यों?
2: आपके पति जलंधर ने कामवश महादेवी के शील का अपमान करने का प्रयास किया था।
0: एक पति के कुकृत्य का दंड उसकी पत्नी को क्यों?
3: वृंदा, देवाधिदेव के हाथों मृत्यु पाकर तुम्हारे पति के कुकृत्य का फल ही उसे मिला है।
0: परंतु महादेवी, इस सब के लिए मेरा शील भंग करने की क्या आवश्यकता थी?
3: नहीं वृंदे, तुम अब भी उतनी ही पवित्र हो जितनी पहले थी। किसी ने तुम्हारा स्पर्श तक नहीं किया है।
0: परंतु मैंने मुनि वेश में श्री विष्णु का स्पर्श किया, स्वप्न में उनकी ओर आकृष्ट हुई।
1: पुत्री वृंदे, वो मात्र तुम्हारी मानसिक स्थिति ही थी। उसे भी हमारी विवशता के कारण उत्पन्न किया गया था। शरीर से तुम अब भी स्वच्छ तथा निर्मल हो।
0: क्या परमेश्वर भी विवश होते हैं?
1: अवश्य होते हैं। हमारी पहली विवशता होती है भक्तों की रक्षा करना, उन्हें सुखी बनाना, और इस कारण ही हम अपनी प्रजा को दुख पहुंचाने वालों का अंत करने को विवश हो जाते हैं।
4: और देवी वृंदा, हमारी दूसरी विवशता होती है अपने ही वरदानी के आतंक को समाप्त करने के लिए अपने ही दिए वरदान की काट करना।
0: परमपिता, मेरा आपसे एक अनुरोध है।
4: कहो वृंदे।
0: मेरे पति की अंत्येष्टि का आयोजन आप कीजिए ताकि उनकी आत्मा पवित्र हो सके।
4: तथास्तु वृंदा। शिवगणों, व्यवस्था करो।
5: जो आज्ञा देव।
4: दैत्यराज जलंधर का शरीर आदर पूर्वक चिता पर रख दो। अब अग्नि प्रज्वलित करो।
0: हे देवगण, किसी भी कारण से, किसी भी उपाय से ही सही, श्री विष्णु हरि ने एक पतिव्रता को मानसिक विक्षोभ पहुंचाया है। वे उसके पति की मृत्यु का निमित्त बने हैं। अतः श्री विष्णु, मैं वृंदा आपको शाप देती हूँ। अपनी मायावी शक्ति से जो दो राक्षस आपने मुझे दिखाए थे, वे किसी समय आपकी पत्नी का हरण करेंगे। पत्नी विरह में दुखी आपको वानरों की सहायता लेनी होगी, और जो मुनि आपके साथ था वे आपका भ्राता बनकर आपके साथ वन में विचरेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
6: महामुनि शौनक जी, ऐसा श्राप देकर वृंदा ने अपनी दया

0: आहुति दे डाली और उसका ये श्राप श्री विष्णु भगवान के राम रूप में अवतार लेने के समय पूर्ण भी हुआ।
1: महाभाग सूत जी, जलंधर की मृत्यु से शिव चालीसा का एक और दोहा भी तो पूर्ण हुआ।
0: वो कौन सा शौनक जी?
1: आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा।
0: हाँ महाज्ञानी शौनक जी, शिव जी की आराधना में ग्रंथ के ग्रंथ लिखे और बांचे गए हैं। कितने ही लेखकों भक्तों ने आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक शिव महिमा का गुणगान अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से किया है।
1: महाभाग सूत जी, ये तो आप उचित ही कहते हैं। ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है जो शिव महिमा से प्रभावित ना हुआ हो। अब आगे की शिव महिमा भी तो सुनाइए।
0: अवश्य सुनाऊंगा शौनक जी, परंतु तनिक विश्राम के पश्चात।
2: श्रोताओं, शिव महिमा के आज के प्रकरण में हमने शिव पुराण के रुद्र संहिता के पंचम खंड के 13वें से 25वें अध्याय तक से लिया था।

भले घर के तू बेटे, मैं तो करता हूँ अरदास यही दाग लगा के बेटी मन।

0: विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति। महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण गंगा पार केवट को उतराई देना चाहते हैं, परंतु केवट अपने प्रभु से सहज भाव से उतराई न लेने की भावना प्रकट करते हैं।

गंगा पार होने के पश्चात भगवान प्रसन्न भाव से केवट को विदा कर भारद्वाज आश्रम संगम नगरी पहुंचते हैं, जहां राम सीता लक्ष्मण व भक्तगण स्नान ध्यान पूजन भजन और कीर्तन कर रहे हैं।

भरद्वाज आश्रम से भगवान चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां कुछ आदिवासी स्त्रियां मिलती हैं और सीता से प्रश्न करती हैं। सीता जी लजा कर कुछ इस तरह कह उठती हैं।

उधर भरत जी अयोध्या से प्रभु राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं और राम जी से अयोध्या वापस चलने की प्रार्थना करते हैं।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: आत्मशक्ति को राम नाम का भरोसा बार बार देकर पवन सुत ने घोर गर्जना की और हवा में उछल पड़े। उनके चरणों की धमक से वो पहाड़ तुरंत पाताल में धस गया। परम भक्त योगीश्वर पवन तनय योग शक्ति से अपना भार संभाल कर निरंतर उड़े चले जा रहे थे। उनके साहस पर रीछ कर समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा,
1: हे पर्वतराज, तुम उठकर वायुनंदन को अपना आधार दो।
2: सुंदर प्रस्ताव है महासागर, लो मैं उठता हूं। हे रामदूत महावीर, तुम्हारी असीम भक्ति और शक्ति को धन्य है। आओ क्षण भर मेरे ऊपर रुककर विश्राम कर लो, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा।
3: मेरी दया विचारने वाले पर्वत शिरोमणि, आपको प्रणाम है। आपके प्रेमपूर्ण निमंत्रण का मान रखने के लिए ये लीजिए, मैं अपने हाथ को क्षण भर के लिए टिकाए लेता हूं। किंतु पर्वतराज, राम काज कीन्हे बिना मोही कहां विश्राम।
2: हे वज्रांग, तुम्हें धन्य है, प्रभु कृपा से तुम्हें अपने कार्य में निश्चय ही सिद्धि मिलेगी।

0: ये वानर निश्चय ही परम साहसी और वीर है। देखो वायु तरंगों पर कैसे उड़े जा रहे हैं। परंतु जिसके पुत्र ने देवराज इंद्र को जीतकर अपने वश में कर लिया और सारे देवगण जिस दशानन से थरथर कांपते हैं, क्या उसके सम्मुख भी ये ऐसी वीरता दिखा सकेंगे? क्या ये रामदूत बनने के सचमुच योग्य हैं?
1: उचित है कि हम सर्पों की माता सुरसा देवी से इस बानर की परीक्षा लेने के लिए गए।
0: ठीक कहा, आओ चले
1: चले। हे माता, प्रभु का दूत बनकर एक बानर लंका जा रहा है, क्या तुम उसकी शक्ति की परीक्षा ले सकोगी?
2: अवश्य, मैं अभी जाती हूँ। आज सुरन मोहे दीन आहारा।
3: हे यही जननी सुरसा माता, दया करो।

0: राम काज करी फिर मैं आवऊं, सीता की सुध प्रभु ही सुनावऊं। तब तुम बदन पैठियों आई, सत्य कहूं मुझ जान दे माई।
1: नहीं, मैं तुझे यहां से एक डग भी आगे नहीं बढ़ने दूंगी, तू मेरा आहार है।
0: माता, मेरा विश्वास करो, जगदम्बा सीता की खोज करके मैं रघुनाथ जी को उनका कुशल समाचार दे आऊं, तब तुम मुझे खा जाना।
1: नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे अभी के अभी लील जाऊंगी, मैं तुझे कदापि नहीं छोड़ूंगी।
0: यदि ऐसा भी है तो फिर देर क्यों करती हो, खा क्यों नहीं लेती मुझे? सोसा ने अपना विकराल मुख योजन लंबा फैला लिया, मैं भी तो योजन लंबा हुआ जाता हूँ। जैसे जैसे तू अपना मुख फैलाती जाएगी, मैं भी अपनी देह विशाल करता जाऊंगा। नाग माता अब अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गई है, इसलिए क्यों ना मैं इसकी विशाल मुख में लघु रूप धर कर घुस जाऊं और इस प्रकार नाग माता की इच्छा पूरी करके चटपट अपने रास्ते लगूं।
1: अरे, हनुमान ने तो बड़ी चतुराई की, कितना छोटा रूप बनाकर इसने विद्युत गति से मेरे मुख में प्रवेश किया और एक चक्कर लगाकर बाहर भी आ गया।
0: हे माता, मैंने तुम्हारे मन के अनुकूल कार्य किया, आप कृपा करके मुझे जाने की आज्ञा दो।
1: हे अंजनी कुमार, रावण के भय से सदा कांपने वाले देवगण तुम्हारे बुद्धि बल को परीक्षा की कसौटी पर परखना चाहते थे, तुम उस कसौटी पर खरे उतरे। मोह सुरन जेहि लाग पठावा, बुद्ध बल मर्म तोर मैं पावा, राम काज सब करी हहु, तुम बल बुद्धि निधान।
2: नाग माता के आशीर्वचनों को विनीत भाव से ग्रहण कर हृदय में राम का ध्यान करके पवनसुत बड़े वेग से उड़े। समुद्र के ऊपर से जाते हुए उन्हें छायाग्राही राक्षस मिला। राक्षस ने एक बड़ा आहार उड़ते हुए देखा, उसने लपक कर मारुति की छाया पकड़ ली। पवन कुमार ने अपने मार्ग में आई हुई ये छोटी सी बाधा क्षणमात्र में ही दूर कर दी। पवनसुत समुद्र पार करके सीधे लंका पहुंच गए। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका नगर का अवलोकन किया।

0: राजधानी की सुरक्षा के निमित्त कड़े पहरे का प्रबंध देखकर कपींद्र केसरी किशोर छोटे से मच्छर के समान सूक्ष्म आकार धारण करके चतुराई से रावण की नगरी में प्रवेश करने चले और सब पहरेदारों की दृष्टि तो चूक गई, किंतु द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। उसकी ऐसी माया थी कि कोई चोर उससे छिप नहीं सकता था। राक्षसी ने उन्हें आकाश में ही घेरा और बोली,
1: जान ही नहीं मर मुसठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा।
2: अच्छा हुआ, अपने पाप का फल भुगतती लंकनी लहू गिराती हुई धरती पर लुढ़कती हुई गिर पड़ी।
1: हे महावीर, ब्रह्मा जी ने जब रावण को वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे यही चिन्ह बतलाया था कि बंदर के मारने से जब तू व्याकुल हो उठे तब समझ लेना कि लंका का नाश निकट आ गया है। अब मैं धन्य हुई। तात प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौसलपुर राजा।
2: लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा।
3: राम राम श्री राम श्री राम।
2: अरे
3: श्री राम,
2: ये तो सज्जन है।
3: श्री राम,
2: इससे जान पहचान करनी चाहिए।
3: राम राम।
2: अच्छा, तू विप्र का रूप धारण कर इससे मिलता हूँ। हे भगवत भक्त, अपने द्वार पर खड़े विप्र को देखो।
3: विप्रवर, विप्रवर अपना वृत्तांत मुझसे कहें। आपको देखते ही मेरे मन में प्रबल आनंद तरंगे उठ रही हैं। क्या आप भगवान के सेवकों में से कोई विभूति हैं? क्या आप दीन जनों के प्रेमी स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी हैं और मुझ अकिंचन को बड़भागी बनाने के लिए स्वयं इतना कष्ट करके पधारे हैं? बोलिए बोलिए भगवान, बोलिए आप कौन हैं?
2: मेरा नाम हनुमान है। मैं श्री राम जी की आज्ञा से भगवती सीता की खोज में यहाँ आया हूँ।
3: हे पवन सुत, अब दया करके हमारी रहनी भी सुनिए। जैसे दांतों में जीभ बेचारी रहती है वैसे ही हमारा निभाव होता है। हे तात, कभी न कभी तो रामचंद्र जी मुझ अनाथ की भी सुधि लेंगे, मेरा भी उद्धार होगा।
2: भक्तराज विभीषण, मैं तो वानर कुल में जन्मा, प्रकृति से चंचल और सब प्रकार से दीन हूँ। भोर के समय जो हमारा नाम ले ले तो उसे दिन भर भोजन नहीं मिले। जब मेरे समान अधम पर भी श्री रामचंद्र जी कृपालु हुए तब आपकी पुकार पर भी दौड़े आएंगे। अब ये बतलाइए भक्तराज, क्या जगदम्बा सीता जी लंका में हैं?
3: हाँ, यही हैं।
2: मैं पूरी लंका छान आया किंतु मुझे उनके कहीं दर्शन नहीं हो सके।
3: वे अशोक वन में हैं।
2: साधु साधु, आपने मेरा बड़ा उपकार किया। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, पता पा जाने पर माता के दर्शन किए बिना मुझे चैन नहीं।
0: नाना कौतुक करते हुए कपींद्र अशोक वन जा पहुंचे। कौशल पूर्वक धीरे धीरे वे उस वृक्ष पर पहुंच गए जिसके नीचे जगदम्बा विराजमान थी। हनुमान जी ने देखा ऐसी गहन करुणा में भी वे राम चरण लीन थीं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करूं का

0: भाई। तेही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा, बहुविध खल सीते समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा।
1: सुन सुमुख सियानी, मंदोदरी याद सब रानी, तब अनुचरी करहु पनमोरा, एक बाहर बिलो की ममोरा।
2: रे नीच रावण, क्या तूने कभी जुगनू के प्रकाश से भी कमलिनी को खिलते देखा है? वो सूर्य से ही संभव है। रे दुष्ट दशमुख, तुझे अभी रामचंद्र जी के बाणों का पता नहीं है। सठ सू नहीं हरी आ नहीं मोही, अधम निलज लाज नहीं तो ही।
1: सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं अभी तलवार से तेरा शीश काटकर इस लीला का अंत ही किए देता हूं।
2: ये तो तू मेरे मन की बात कह रहा है, मैं तुरंत इस संकट से उबर जाऊंगी।
1: सूर्यवंशी राम में भला ऐसी कौन सी विशेषता है जो पुलस्त्यवंशी मुझ दशानन रावण में नहीं है?
2: सुनेगा रे नीच तो सुन। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर, सो भुज कंठ की तब असि घोरा, सुनु सत अस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम, फुलस्तय के समान श्रेष्ठ ऋषिकुल को अपने कुकर्मों से कलंकित करने वाले रे दुरात्मा, विश्वास रख मेरा वचन निरर्थक न जाएगा। एक दिन मेरे स्वामी तुम्हारे इन सभी शीशों को एक ही बार में उतार डालेंगे।
1: मैं अभी तेरा अंत किए देता हूं।
3: हे नाथ, समस्त जगत के स्वामी, आप जैसे अजय योद्धा हैं, वैसे ही महापंडित भी हैं। दासी मंदोत्री की प्रार्थना स्वीकार करें, पर स्त्री की हत्या करना नीति विरुद्ध है। हे नाथ, ऐसा ना करें।
1: ठीक है, ठीक है। सीता, तुझे एक मास और सोचने का अवसर देता हूं।
4: बहनों, मैंने कल रात एक सपना देखा है।
2: क्या देखा सपने में तूने त्रिजटा?
4: मैंने देखा है कि एक बंदर ने आकर लंका को जला डाला है। राक्षस सब मारे गए हैं और हमारे मालिक रावण गधे पर सवार होकर दक्षिण की दिशा की ओर जा रहे हैं। उनका मस्तक मुंडा हुआ है और बीसों हाथ कटे हुए हैं।
2: अरे सच?
4: अरे झूठ थोड़े ही कह रही हूँ। फिर मैंने देखा कि नगर में रामचंद्र जी के नाम की दुहाई फिर रही है और वो सीता जी को साथ लेकर तथा यहाँ का राज विभीषण को देकर चले गए। फिर मेरी नींद टूट गई। भोर का सपना था बहन। तुम सब जानती हो कि मेरे मन में ना तो किसी प्रकार का छल है, ना कपट और ना स्वामी भक्ति में ही मैं किसी से पीछे हूँ। पर बात तो कही जाएगी। मेरा मन कहता है कि स्वामी ने सीता जी का हरण करके अपना भला नहीं किया।
2: हम तो निर्बुद्धि हैं त्रिजटा, जैसा मालिक ने कहा वैसा कर दिया। पर तुम जो सपने की बात सुना रही हो, उससे हम सबके मन में बड़ा भय समा गया है।
3: ठीक बात है
2: त्रिजटा, तुम्हें उपाय बताओ बहन। ऐसे में हमें क्या करना उचित होगा?
4: मेरी जान में दंड देने योग्य किसी ना किसी भयंकर खोज का बहाना करके तुम लोग इधर उधर हो जाओ। मैं इस बिचारी देवी स्वरूपा तपस्विनी देवी को थोड़ा बहुत धीरज बंधाऊंगी। हे स्वामिनी, आपके समान तेजस्वी नारी को अपार दुख में इस तरह डूबा हुआ देखकर मैं बड़ा कष्ट पा रही हूँ। मैं राक्षसी भले ही हूँ, पर हरि के चरणों में मेरा असीम अनुराग है। मैं अपनी भरसक सेवा से आपको संतुष्ट करूंगी। मैंने एक सपना देखा था स्वामिनी, कि रामचंद्र जी लंका को विजय करके आपको ले गए हैं।
2: अरे न जाने कब क्या होगा त्रिजटा, परंतु ये तो निश्चय है, एक मास के अंदर ही वो दुष्ट

0: मेरे प्राण हर लेगा। इन आंखों से मैं अपने जीवन धन को फिर कभी ना दिख सकूंगी।
1: अपने मन को तनिक भी छोटा ना करो स्वामिनी, मेरा भोर का सपना कभी निरर्थक नहीं जा सकता।
0: हे माता, तुम जब इतनी दया दिखला रही हो तो मेरे लिए एक चिता भी बना दो। मैं ये देह त्याग कर अब अपने पति के हृदय में निवास करना चाहती हूँ।
1: अरे नहीं स्वामिनी, आप अपना मन यूं छोटा ना करो।
0: नहीं माता, तुम चिता बनाकर मेरा परम उपकार करो।
1: हे सुकुमारी, अभी ये संभव नहीं है। हम भला रात के समय आग कहाँ पाएंगी। आप धीरज रखें, मैं कल कोई ना कोई उपाय सोचूंगी। अच्छा, तो मैं भी अब घर चली जाती हूँ, आप विश्राम करें स्वामिनी।
0: विश्राम? विधाता ही मेरे प्रतिकूल हो गया है तो फिर विश्राम का ना आग मिलेगी और ना मेरी पीड़ा ही मिटेगी। आकाश में इतने अंगारे सुलग रहे हैं, एक मुझ पर भी गिर पड़े तो सारी पीड़ा ही समाप्त हो जाए। पावक मैं ससि सवत न आगी, मानहु मोहि जाने हत भागी। सुने ही विनय मम पिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना, ते ही अग्नि जन करहि निदाना।

0: प्राणनाथ की अंगुली में पड़ी रहने वाली ये मुद्रिका यहाँ कैसे आई? या ये कोई और मुद्रिका है? नहीं नहीं, ये तो वही है। इस पर उनका नाम भी अंकित है। तब क्या वो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति पर ब्रह्म त्रैलोकेश्वर तो अजय हैं। माया से भी ऐसी मुद्रिका नहीं बनाई जा सकती। फिर ये यहाँ कैसे आई? इसमें क्या रहस्य है?
1: भगवान श्री रामचंद्र की माया अपार है देवी, उसे कौन जान सकता है?
0: कौन? अरे तुम कौन हो? मेरे कानों में अमृत खोलने वाले, तुम अपना रहस्य क्यों नहीं बताते?
1: रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, ये मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कहां सही दानी।
0: क्या कहा? नरवान रही संग कहो कैसे?
1: माता, आपकी खोज में श्री राम जी और लक्ष्मण जी पंपासर पहुंचे, वहां मैं और सुग्रीव उन्हें मिले। आपने हमी लोगों को देखकर पुष्पक से वस्त्राभूषण फेंके थे, वहीं सुग्रीव और राम जी में मैंने अग्नि को साक्षी देकर मित्रता करवाई। बाली को मारकर श्री राम जी ने सुग्रीव को राज दे दिया। सुग्रीव ने आपकी खोज में बानर दूत चारों ओर भेजे, जिनमें से मैं यहां तक आने में सफल हुआ।
0: हे तात,

0: विरह जलधि में डूबती हुई दुखिनी के हेतु तुम नौखा बनाए हो। हे पुत्र, अब तुम मुझे देव लक्ष्मण और रघुनाथ जी के समाचार सुनाओ। कोमलचित्त वाले रघुकुल तिलक ने मेरी प्रति ऐसे निठुराई क्यों बरती है?
1: हे माता, जगत की नाथ श्री राम जी भला निठुर कैसे हो सकते हैं?
0: हे नाथ, आप तो ऐसे कोमल चित्त के हैं कि अपने दास दासियों तक को भी कभी प्रसन्न नहीं देख सकते। फिर आपने मुझ दुखनी को ही इस प्रकार क्यों बिसा रखा है? हे प्राणनाथ, क्या तुम्हारे श्याम सुकुमार शरीर को मुझे नाकों से फिर कभी देखने का सौभाग्य मिल सकेगा?
1: माता, आप अधीर ना हो, राम जी एक क्षण के लिए भी आपको नहीं बिसार पाए। मैं सच कहता हूं, उनका दुख आपसे दुगना है। लक्ष्मण जी भी यूं तो कुशल पूर्वक है, पर आपके दुख से उन्हें भी अपार दुख है। विश्वास रखें, श्री राम जी दुष्ट दशानन का वध करके शीघ्र ही आपके पास आएंगे।
0: क्या श्री राम जी ने मेरे लिए कुछ भी संदेशा नहीं दिया?
1: ऐसा मत कहे माता। कहो राम वियोग तब सीता, सकल भय विपरीता, नव तरु किसले मनोहु किसानु, काल निशा सम निस ससि भानु, कुबले विपिन कुंत बन सरिसा, वारिद तपत तेल जन बरसा, जीहित रहे करत तेही पीरा, उरग श्वास सम त्रिविद समीरा, कहे उते कछु दुख घटी होई, काही कहूं यह जान न कोई, तत्तु प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रस इतने ही माही। माता, आप धैर्य धारण करें और अपने सेवकों को सदा सुख देने वाली श्री राम का स्मरण करके अपनी ये कातरता छोड़ दें। ये राक्षस पतंगों के समान शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी के प्रखर बाणों की अग्नि से भस्म हो जाएंगे। हे माता, मैं रघुकुल नायक की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं आपको इसी क्षण यहां से ले जा सकता हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता, परंतु प्रभु ने मुझे ऐसी आज्ञा प्रदान नहीं की है। हे अम्ब, विश्वास कीजिए, केवल कुछ ही दिनों की बात है, दीन बंधु दयानिधि सेना समेत यहां आकर राक्षसों का संहार करेंगे।
0: हे पुत्र, तुम्हारी उत्साहवर्धक बातें सुनकर भी मेरा मन शंकित है। भले इन पर्वतों जैसे लंबे चौड़े महाबलशाली राक्षसों से क्या प्रभु जीत सकेंगे? अरे, हनुमान जी ने अपना विराट रूप उद्घाटित किया। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। इनके इस रूप को देखकर मुझे विश्वास होता है कि श्री राम जी अवश्य विजयी होंगे।
1: हे माता, वैसे तो हम बंदरों की बल बुद्धि बड़ी साधारण सी है, पर विश्वास रखिए कि प्रभु की कृपा होने पर एक नन्हा सा सर्प भी अति विशाल काय गरुड़ को खा सकता है।
0: हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के भंडार हो, रघुनाथ की तुम पर सदा कृपा बनी रहे। हे तात, तुमने यहाँ आकर मुझे परम सुख दिया है, तुम्हारा कल्याण हो।
1: माता, मैं धन्य हूं, कृपा कर मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस वाटिका के फल खाकर अपनी भूख मिटाऊं।
0: जाओ तात, सुख से मीठे फल खाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।

0: अपने पुत्र अक्षय कुमार तथा अनेक योद्धाओं का संहार करने वाले वानर के ऊपर अब तो रावण को भयंकर क्रोध चढ़ाया। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र महाबलशाली इंद्रजीत मेघनाद को आज्ञा दी। पिता की आज्ञा से मेघनाद अनेक महाबलशाली योद्धाओं को लेकर हनुमान जी को पकड़ने के लिए चल पड़ा। युद्ध में मेघनाद का रथ टूट गया। इससे मेघनाद और उनके साथियों के क्रोध का वारापार नहीं रहा। सब के सब एक साथ हनुमान जी पर टूट पड़े, किंतु महावीर ने राम कृपा से एक एक के छक्के छुड़ा दिए। हनुमान के प्रहार से इंद्रजीत को भी क्षणभर के लिए मूर्छा सी आने लगी। अंततः मेघनाद ने उनसे माया युद्ध करना आरंभ किया। ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा कपिमन कीन विचार, जोन ब्रह्म सर मान्यो महिमा मिटई अपार। ब्रह्म बाण कपि कह तेहू मारा, परतिहू बार कटक संघारा। तेही देखा कपि मुरछित भयो, नाग पास बांधे से ले गए। हनुमान जी को रावण के दरबार में लाया गया। वहां देव दनुज नर किन्नर सब हाथ बांधे खड़े थे। रावण हनुमान जी को देखकर हंसा और बोला,
1: कवन तय खीसा कहके बल घाल से बल खीसा, कीधो श्रवण सुने नहीं मोही, देखूं अति असंक सट तो ही मारे निश्चर के ही अपराधा, कही सट तोई न प्राण कहीं बाधा।
2: सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जास बल बिरचति माया, जाके बल बिरंच हर ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। और शेषनाग जिसकी आज्ञा से धरती अपने शीश पर धारण किए हुए, जिन्होंने क्षण मात्र में ही शिव जी का धनुष भंग करके तुझे और तेरे समान दुर्मति राजाओं का अभिमान चूर चूर कर दिया था, और जिनकी अर्धांगिनी को तू चुरा कर लाया है, हे अधम, मैं उन्हीं समर्थ राम का सेवक हूं। घूमते घामते कुछ फूक लगी तो फल खाने लगा। अरे अपने स्वभाव वश दो चार पेड़ मुझसे टूट गए, और जो मेरे भोजनानंद में बाधक हुए वे मारे गए। इसमें मेरा क्या दोष है?
1: अरे कुटिल कत, तू कदाचित मेरे प्रभाव को अब भी नहीं समझा। देख, मेरे इंद्रजीत पुत्र ने तुझे क्षण मात्र में ही बांधकर पटक दिया है।

0: हे महाराज रावण, तुम्हारी शक्ति और प्रताप से मैं परिचित हूं और मुझे अपने बांधे जाने की तनिक भी लज्जा नहीं है, क्योंकि इस प्रकार बंधकर भी मैं अपने प्रभु का कार्य कर रहा हूं।
1: इस प्रकार बंदी होकर तू अपने स्वामी का क्या भला कर रहा है बंदर?
0: हे दशानन, मैं तुमसे सविनय प्रार्थना करता हूं कि अपना अभिमान छोड़ दो, जिसके कारण महापंडित होकर भी तुम मेरे प्रभु की लीला को समझ नहीं पा रहे हो। हे वीर, तुम अपने परम पवित्र ऋषि कुल की तनिक तो लाज रखो। ये मत भूलो कि जिनकी सती पत्नी का तुम हरण कर लाए हो, उनके भय से देवता और राक्षसी क्या स्वयं काल भी थर थर कांपता है। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान।
2: कोई है? इस दुष्ट की गर्दन उतार लो।
3: हे परम प्रतापी, दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, आप ऐसा पाप न करें।
1: तुम्हारी यह मंत्रणा मुझे स्वीकार है विभीषण, मैं अब इसका बध नहीं करूंगा, वरन इसकी अंग भंग करके इसके स्वामी के पास भेजे देता हूं। बंदरों की अपनी पूछ पर बड़ी ममता होती है, इसलिए इसकी पूछ में कपड़ा लपेट कर और तेल छिड़क कर आग लगा दी।

0: పొలకి పొలకి లంకా సబ జారి కూద పరా పుని సింధు మఝారి పూంఛ బుఝాయి ఖోయి శ్రమ ధరి లఘు రూప బహోరి జనక సుతా కే ఆగి ఠాడ భయో కర జోరి.
1: హే మాతా, ఆపకే చరణో కే ప్రతాప్ సే మే లంకేష్ కో ఉచిత్ శిక్షా దేకర ఆ రహా హూ. అబ్ ముజే జానే కీ ఆజ్ఞా దీజియే. और जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने मुझे चिन्ह स्वरूप अपनी मुद्रिका प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे अपना कोई चिन्ह देने की कृपा कीजिए.
2: हे पुत्र, श्री मेरा चूड़ा मणि तुम लेते जाओ. इसे देखकर मेरे नाथ संतुष्ट हो जाएंगे और कहे हो तात असमोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूरन कामा दीन दयाल बिरदु संभारी हर हुनाथ मम संकट भारी. कहना हे नाथ, यदि आप एक मास के भीतर मुझे लेने के लिए ना आएंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी.
1: हे माता, आप अपने मन को इतना छोटा न कीजिए, धैर्य धरिए.
2: हे पुत्र हनुमान, मैं कैसे धैर्य धारण करूं? प्रभु कृपा से तुम आज आ गए तो मुझे जीने का कुछ सहारा मिल गया है. तुम्हें देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है, पर अब तुम भी जा रहे हो. मेरे लिए वही दुखदायी दिन और वही प्राण लेवा रात फिर से आ गई.
0: जनक सुत ही समुझाई करी बहु भी

अति धीरज दीन। चरण कमल सिर नाई कपि गमनु राम पहिंकी। हनुमान जी ने लौटकर श्री राम लक्ष्मण सुग्रीव जामवंत आदि से सब कथा कही। उसे सुनकर परस्पर प्रेमवश मिलते हुए स्वामी और सेवक दोनों ही भाव विभोर हो गए। और कुछ समय बीतते न बीतते वानर सेना लंका की ओर प्रयाण करने लगी।

0: मर्यादा पुरुषोत्तम राम। इस विशेष नाटकमाला के संयोजक हैं श्री चिरंजीत और निर्देशक श्री विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक। इसके लेखक थे श्री अमृतलाल नागर। संगीत रचना श्री राम सरन दास ने और ध्वनि संयोजन श्री सुदर्शन कुमार तथा श्री कृष्ण कुमार नरूला ने किया। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री सुरेश शास्त्री, दिनेश्वर शास्त्री, मनमोहन मलिक, हरीश पांडे, राजेंद्र वर्मा, देवराज दिनेश, शीला शास्त्री, सरोज भार्गव, प्रतिभा सिन्हा, मीरा देशपांडे और सुषमा आहूजा। संगीतांश के कलाकार थे श्री मनमोहन पहाड़ी, श्री अमिताभ, श्रीमती पुष्पा अवस्थी और कुमारी शांता सक्सेना।
1: कल इसी समय इस विशेष नाटक की 8वीं और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।